एक्स का एफ एम कवा ओल अंग एम तेन कुछ आउंग प्रोखर मगो से उजे से का के राधो के कवे तू का खई से पंग कोई खई कुआ राधो के नुमरो या ओने तेन से बा पेन ने खा एफ एम मालूम तो तू कोई आउंग ओल अंग गोई सा उजे से का के आ प्रोखर मगो को ना के कवे तू का खई से पंग कोई खई कुआ राधो के नुमरो या ओने तेन से बा पेन ने खा एफ एम मालूम तो कोई आउंग ओल अंग अंकुए सगो जे से का के ओल अंग को ना के कवे तू आ खई से पंग वा अंकुए खई को आ रा दुकी नुमरु या वनी तें से वा पेन ने खा एफ एम मसे दे क्वांग कन गु सुपा के से जिन ध्यार तक मनी ते मोंग का अंग ओल अंग ए तें हुआ को ना या दगे का उवा मसे दे के दंग तपन मो गुसी दे चिमा दंग के ओल अंग जी चा को ना कोई अलग को प्रोग्राम नो मुंडु तुकु उंगवा ओल अंग गुसा कवजी से का कोन का के अप्रोखम नो कोना के मोंगमसो टेंडुइटा उंगवा ओलांग।